बहना जे परिया बल जावो लाडी के लरियो लाजो बजी गेहन गजीरा लाडी लरियो लाजो।